जब दिन के साहिल डरते हैं और शाम बेचारी आती है, दिल चुपके चुपके रोता है जब याद तुम्हारी आती है। जब याद तुम्हारी आती है दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये रात के दिए बुझते नहीं और दिल में अगन लग जाती है।